0: तो साथ ये के पाठोपलो चार मेरा हाउस को रेडियो आदि खोले रसोई क्या हो।
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लाग्यो। तपाई यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4 मेगा।

0: घूमत न अलिया हमरे गाड़ी में छह बजे
1: ए समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी को डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ
3: रेडियो आदि खोला 105.4

एसएस आदि फ्ला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा

0: उनी मल उत्पादन गरी खरीद बिक्री पनि गरिन्छ नि।
1: अन्य विस्तृत जानकारीको लागि वालिङ प्रोडक्ट होल्डिङ बहुदेशी सहकारी संस्था वालिङ आठ नयाँ बजार र पतञ्जलि यो पीठको आडेमा सम्पर्क नम्बर 0364140696।
2: यो किचन को डेकोरेशन देखे त खाना बनाने मन लगे मैं
3: हेर हेर भाड़ा सब फेके नरिशाऊ न तिमी भकुंडे को बाबा फर्नीचर में तिमी खोजे जस्ते किचन डेकोरेशन बनाऊ गई हाल भैया।

0: रेडियो तो सात से एक से पाँच चौपलो चार मेगा हर्ट्ज को रेडियो आदि खोले रसोई क्या हो।
1: नमस्कार, म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लायो। तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4 मेगा।